0: Sie hat schon wieder.
1: What happened?
0: Auf die Klinge. Exactly 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया।

0: भनेपछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिउला।
0: किन्देऊला।

0: 96.6 शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: शुक्ला गंडकी टाइम चेक
2: यति बेला रातिको ठीक 8 बज्यो।

नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आज मिति विक्रम सम्म 2083 साल साउन महिनाको 9 गते शनिबार असार शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि अंग्रेजी मिति अनुसार जुलाई 25 सन् 2026 नेपाल सम्मत 1146। आज तुलसी रोपण चतुर्मास व्रत शुरू। हरिशयनी एकादशी व्रत सूर्यदेव बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। बिहानी शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। समाचार कक्षबाट म रिमा शुक्ला गण्डकी समाचार शुरू गरौं। यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट